दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, ऐसे ही किसी के दिल में ख्याल आया होगा और दिल देने और दिल लेने का रिवाज अस्तित्व में आया होगा। मैं उस ख्याली दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत की दुनिया की बात कर रही हूँ, हृदय प्रत्यारोपण की बात कर रही हूँ, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रही हूँ। क्योंकि आज का जो दिन है 3 अगस्त, भारत में प्रयास तो बहुत बार हुए थे, काफ़ी दिनों से चल रहे थे, लेकिन पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो हुआ था 3 अगस्त के दिन वर्ष 1994 में। यह प्रत्यार्पण भारत के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ पी वेणुगोपाल की अगुवाई में भारतीय चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक किया था। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप पूजा है आपके साथ और बना रहेगा हमारा ये साथ पूरे 11 बजे तक। जब हम बात करते हैं दिल की, तो हमारी मान्यताओं के अनुसार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 जो सुपर इंद्रिय है वो है मन, और मन को हम कभी दिल कह लेते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो हमारा दिल है, अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है, लेकिन अगर हम इमोशनली बात करें तो ये जो दिल है ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की बात करता है। ऐसे में आज अगर आप जुड़ना चाहते हैं दिल से दिल तक, अगर आप नॉनस्टॉप गपशप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 2213-1341 है हमारा नंबर, जुड़ जाइए और बता दीजिए कब कौन सी घटना आपके जिंदगी में घटी और आपने बड़े प्यार से कहा दिल पे मत ले यार। कब ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे दिल विल प्यार व्यार के खेल की कोई बात कही और आपने उसे संभाला, उसे सहारा दिया, उसे बहुत हल्के से प्यार से कहा दिल पे मत ले यार। जी हाँ, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दिल पे मत ले यार। फिलहाल दिल कहीं खो गया है। आइए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में देख लेते हैं कहाँ खो गया है दिल।

खोए हुए दिल को ढूंढेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, सामान्य से मध्यम गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बात करें अगर हम गुजरे कल की, तो अधिकतम तापमान 34.4 यानी कि सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 28.9 यानी कि सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 93% और निम्न आर्द्रता 66% रही। वर्षा 0.6 मिलीमीटर हुई। कार्यक्रम में इंतजार कर

रहा है आग का। आज के दिन एक चुटकी नुस्खे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए दिल दिया गल्ला आतिफ असलम की आवाज में।

आज के दिन। बात करें अगर आज के दिन की 3 अगस्त की, तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत ही की ये बताते हुए कि आज के दिन को हम मनाते हैं हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में। साथ ही साथ 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से स्तनपान सप्ताह। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को

इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है। समाज और परिवार में भी जागरूकता फैलाई जाती है कि वो धात्री माताओं को सही सुरक्षित वातावरण, भोजन, पोषण दें और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा में सहयोगी बनें।

0: मनाया जाता है तरबूज दिवस, वाटरमेलन डे। उद्देश्य इस रसीले, स्वादिष्ट और पौष्टिक फल के महत्व को उजागर करना, लगभग 90% पानी से भरपूर, शरीर को हाइड्रेट रखने वाला विटामिन ए, सी, पोटेशियम, लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में लिए हुए ये तरबूज हृदय, त्वचा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद लाभकारी और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में शरीर को शीतलता, ताजगी भी प्रदान करता है। मौसमी फलों को आहार में शामिल करने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश देता है तरबूज दिवस। आज के दिन को अत्यंत दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, समय पर उसकी पहचान करने के लिए, प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहयोग प्रदान करने के लिए 3 अगस्त को मनाया जाता है क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस। इस अवसर पर दुनिया भर में स्वास्थ्य संस्थाएं, रोगी सहायता समूह और चिकित्सा विशेषज्ञ इस दुर्लभ बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। अब अगर बात करें कि ये क्लोव्स है क्या, तो ये अंग्रेजी के 5 शब्दों का संक्षिप्त रूप है, कंजेनिटल लिपोमैटस ओवरग्रोथ, वेस्कुलर मॉल फॉर्मेशन, एपिडर्मल नेवाइल एंड स्केलेटन। इतनी सारी बातें हम आम जनमानस के लिए बेहद मुश्किल है, ये सब चिकित्सकीय भाषा है। आम भाषा में अगर कहें तो अत्यंत दुर्लभ बीमारी जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों में असामान्य रूप से ऊतकों और वसा, टिश्यूज और फैट की वृद्धि होने लगती है। इसके साथ साथ रक्त वाहिकाओं में भी विकृतियां, त्वचा पर जन्म चिन्ह तथा हड्डियों और रीढ़ की असामान्यताएं भी देखी जाती हैं। इन्हीं सारी बीमारियों के प्रति जन जागरूकता के लिए आज का दिन, यानी कि 3 अगस्त का दिन, क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे इसी आज के दिन में एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
1: आज के दिन

0: Батьки Димі. बात कर लें आज के दिन जन्मे लोगों की। भारत भारती, साकेत, यशोधरा जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के कवि, खड़ी बोली के सशक्त हस्ताक्षर मैथिली शरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1846 में। प्रसिद्ध साहित्यकार, विचारक, लेखक, दार्शनिक, भाष्यकार और स्वतंत्रता सेनानी रोहित मेहता का जन्म हुआ था वर्ष 1908 में। लेखन की दुनिया में उर्दू लेखन की शायरी विधा से जुड़े हुए, गजल विधा से जुड़े हुए, साथ ही साथ बॉलीवुड के गीतकार शकील बदायूनी का जन्म आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1916 में। बाल अभिनेता, भारतीय संगीतकार जयदेव का जन्म हुआ था वर्ष 1919 में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक, पद्म विभूषण बनारस घराने के पंडित छन्नूलाल मिश्रा का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 3 अगस्त को वर्ष 1936 में। भारतीय क्रिकेटर अपूर्व सेन गुप्ता का जन्म हुआ था वर्ष 1939 में। क्रिकेटर बलविंदर सिंधु का जन्म हुआ था 1956 में और क्रिकेटर गोपाल शर्मा का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1960 में। भारत की महिला लॉन बॉल टीम की खिलाड़ी लवली चौबे का जन्म हुआ था वर्ष 1980 में और भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ियों में से एक सुनील छेत्री का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1984 में। स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा पाकिस्तान में भारत के प्रथम उच्चायुक्त श्री प्रकाश का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1890 में। वरिष्ठ राजनेता और राज्यपाल सैन्य सेवा विश्वभूषण हरिचंदन का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1934 में और वर्ष 1941 में जन्म हुआ था बाबा हरभजन सिंह का। भारतीय सेना के सैनिक जिनसे जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। आपका जन्म हुआ था वर्ष 1941 में आज ही के दिन यानी कि 3 अगस्त के दिन। ये तो हुई बातें
1: आज के दिन।
0: सुन लेते हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में अगला गीत, जिसमें आवाज पंडित छन्नूलाल मिश्रा की भी है शामिल।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

चुटकी नुस्खे। जब सुबह से बातें हो रही हैं दिल की, तो फिर नुस्खे भी दिल के ही दिए जाएंगे। दिल को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी जैसे आसान उपायों को अपनाया जा सकता है। इन सभी आदतों से हृदय मजबूत होता है और बीमारियों का खतरा कम होता है। अगर हम बात करें खान पान की, तो कहा जाता है कि लगातार लहसुन का सेवन, रोजाना सुबह अगर हम एक कच्चा लहसुन खाएं तो वो हमारे खून को साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। फलों और हरी सब्जियों का सेवन भी, फाइबर युक्त साबुत अनाज भी दिल के लिए बेहद फायदेमंद है। चाय की शौकीन है तो दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी पी ले, दिल की सेहत में सुधार होगा। नमक और वसा की मात्रा को कम कर दें, चीनी और तली भुनी चीजों का इस्तेमाल कम कर दें। जीवन शैली में बदलाव लाएं, रोजाना थोड़ा सा टहलने जाएं, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें, तनाव से बिल्कुल दूर रहें। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास से मानसिक तनाव कम होगा। पर्याप्त नींद लें 7 से 8 घंटे की। नशे से दूर हो जाएं, धूम्रपान और शराब के सेवन से पूरी तरह दूरी बना लें। बात हुई थी चुटकी भर की और दे दी मैंने आपको मुट्ठी भर। लेकिन ये तो सब था हमारे बायोलॉजिकल स्वास्थ्य के लिए। बात करें अगर दिल के इमोशनल स्वास्थ्य की, तो उसके लिए सिर्फ एक नुस्खा है। कोई कुछ भी कहे, किसी की कोई बात अगर पसंद ना आए, तो बड़े प्यार से आंखें मूंद कर अपनी तर्जनी और अंगूठे को एक साथ मिलाकर कहें, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। चुटकी नुस्खे आजमाया नुस्खा है, आप भी आजमा कर देखें। और उसके बाद भी अगर राहत ना मिले, तो किसी भी बात को दिल पर मत लें, हाथों में थाम लें।

0: गेट का ने गुरका बोला,
1: अंदर जाने को 50, फोटो खींचना है तो 150, फॉरेनर है तो 250, गाइड होना तो 350, अगर लड़की के साथ लफड़ा अफड़ा करने का है तो

मध्य प्रदेश से जुड़ी थी हमसे रेनू सिंह, और रेनू सिंह ने कहा कि ये जो ओम इग्नोराय नमः है, ये तो उनका बचपन का मूल मंत्र है, और यही वो वजह है कि कभी भी उन्हें किसी भी बात पर दर्द नहीं होता। दर्द मींस दिल का दर्द। भाई शरीर पर अगर घाव लगेंगे तो दर्द होना है, ये लाजिम है। पायल जुड़ी थी हमसे और पायल ने कहा कि किसी भी बात का बुरा कतई मत मानिए, दिल पर बिल्कुल मत लीजिए तब तक जब तक आप अपनी नजर में बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सामने वाला जो आपको देख रहा है ये उसका नजरिया है, और आप अगर इतने समर्थ हैं कि किसी के नजरिए को बदल सकते हैं तो बदलिए, लेकिन किसी को इतनी मजबूती मत दीजिए कि वो आपको डिस्टर्ब करके चला जाए। प्रेमी 75 हूं और आप 77 के लिए रहे तैयार। एजेंट विनोद से अगला गीत आप सभी के लिए है।

बात करें अगर हम दिल के स्वास्थ्य की, तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने दिल के बचपने को बनाए रखना। दिल का बचपना यानी हमारे मन मिजाज का बचपना। आम बोलचाल की भाषा में हम अपने मन मिजाज को, अपने मूड को दिल से ही जोड़ते हैं। दिल ने कहा, दिल ने नहीं कहा, दिल कह रहा था, दिल दिया, दिल लिया, उफ उफ उफ। कि नन्हा सा दिल भावनात्मक रूप से, काव्यात्मक रूप से किस किस काम आता है, क्या क्या करवा देते हैं ना ये शायर, ये लेखक, ये गीतकार, ये कवि इस बेचारे दिल से। दिल को तो पता भी नहीं होता कि वो क्यों धड़क रहा है, उसकी धड़कनों को शायर कवियों ने किस किस तरह से कहां कहां इस्तेमाल किया है। फिलहाल घड़ी की सुइयां कह रही हैं आज के लिए बस इतना ही, गपशप को यही हमें देना होगा विराम। कल सुबह तक के लिए, कल सुबह ठीक 10:02 पर फिर अगला अंक आ जाएगा आपके साथ, होगी आपसे मेरी मुलाकात फिर किसी सुबह किसी शाम। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, दिल से दिल तक जुड़े रहें, और दिल तो बच्चा है जी, गाते गुनगुनाते रहें। नमस्कार, अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार।

जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दिल थाम कर बैठिए देवियों और सज्जनों, क्योंकि दोस्तों आज इस मंच पर न सिर्फ रंग बरसेंगे बल्कि गीत भी बरसेंगे, और बरसेगा एक और चीज जो है मेरे साथ, वो है खुशी। जी हाँ दोस्तों, बल्कि हमेशा की तरह अपने गीतों पे एक तड़का जो आपका होश बिल्कुल से उड़ा कर रख देगा और आप

होश को उड़ाने के बाद ये तड़का का शो आप सभी को स्वागत के लिए पेशे खिदमत है। दोस्तों कहते हैं कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। आइए सुनते हैं पलक मुचल की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे पलक मुच्छल की आवाज में। और कहते हैं कि इश्क के चर्चे जो हैं, चाहे जितने भी हो, आम हो जाए, बिना नखरों के हमेशा भी कामयाब नहीं होता। वैसे दोस्तों, तड़के की बात क्या है कि कहते हैं कि असली तड़का दोस्तों की जिंदगी में, तड़का बहुत जरूरी है। असली तड़का क्या होता है? बिना तड़के की जिंदगी वैसे ही बिना पासवर्ड के जैसे वाईफाई होती है, उसी तरह की। लेकिन दोस्तों, वक्त है अभी कि हमारे शो का 3:09 हो चुके हैं। तड़कों पे तड़का लगाते जाऊंगी, लेकिन साथ में हमारी परियोजना प्रस्तुति भी बाकी रहेगी। आइए सुनते हैं एक और गीत, उसके बाद हम सुनेंगे परियोजना प्रस्तुति।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे बहुत ही शानदार कलाकारों में से एक कलाकार दीपिका पादुकोण। जी हाँ, श्रेया घोषाल और साथ में थी गणेश चंदन शिवे की आवाज़ दीवानी मस्तानी फिल्म से, जी नहीं बाजीराव मस्तानी फिल्म से, और ये गीत ऐसे ही था। आइए अभी सुनते हैं हमारा जो कार्यक्रम है, परियोजना प्रस्तुति, क्योंकि हमारे परियोजना प्रस्तुति को आज जरूरी है बोलना। आइए सुनते हैं
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: जी हाँ दोस्तों, अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं परियोजना प्रस्तुति में प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सफल और वित्तीय समावेशन मिशन, जिसे इसकी शुरुआत देश के हर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण हम बातें यहाँ पर बताएंगे। पहली बात यह है कि जीरो बैलेंस खाता, इस योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाने के लिए किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है और खाता धारकों को एक मुफ्त रुपये यानी कि डेबिट कार्ड दिया जाता है। रुपये कार्ड के साथ 2 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है, जो कि आपके खाते के लिए 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए ये उपलब्ध है। इसके साथ ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी सुविधा, खाता सही तरीके के चलाने पर 6 महीने बाद 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट यानी कि लोन सुविधा मिलती है। इसके बाद पेंशन सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा खाते में डीबीटी के माध्यम से आता है। कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है, ये खाता खुलवा सकता है। यदि आपके पास पहले से कोई बचत खाता है तो आप उसे भी जनधन खाते में बदलवा सकते हैं। ये खाता आप किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र के पास जाकर खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड, जिसे सबसे महत्वपूर्ण, इसके होने पर किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। पैन कार्ड यदि आप उपलब्ध हो आपके पास ही, एक साथ वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा जॉब कार्ड, अगर आधार कार्ड ना हो तो ये सभी उपलब्ध होने चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। इसके साथ महत्वपूर्ण नियम यह है कि रुपे कार्ड का इस्तेमाल 2 लाख के मुफ्त दुर्घटना बीमा का लाभ उठाने के लिए, ये जरूरी है कि दुर्घटना की तारीख से पिछले 90 दिनों के भीतर रुपे कार्ड से कम एक सफल वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन किया गया हो। एक परिवार एक लोन, 10,000 की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा, पूरे परिवार में केवल एक खाते

0: अधिमानत घर की महिला के खाते पर ही मिलती है। ये योजना वर्तमान में पूरी तरह से सक्रिय है और करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार समय समय पर इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाती रहती है। यदि आप इस योजना के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो इसे आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। आप पुराने खाते को जनधन खाते में बदलवाने के लिए अपनी वेबसाइट में जाकर पूरी पोर्टल को पूरी तरह से जांच करके आप देख सकते हैं।
1: परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति,
0: जी हाँ दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में। आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम 3 का तड़का।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का, 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का, 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का रिंकू के साथ आप सुन रहे हैं। याद दिलाने के बता दूं कि ये है 107 FM रेनबो और यहाँ पर लगता है ऐसे ही गीतों का तड़का। तो चलिए राहत फतेह अली खान साहब की याद में हम आपको एक बढ़िया सा तड़का गीत सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में वो जादू है कि आपकी भी सोच इधर उधर हो ही जाती है। वैसे हीरो फिल्म की ये गीत थे, गीत के बोल लिखे थे कुमार ने और संगीत से सजा छा जच्ची कटियाल ने। वैसे दोस्तों तड़का में इस वक्त 3:25 हो गए हैं, ज्यादा बातें मैं करूंगी नहीं क्योंकि गीतों का अभी समय है और गीत बहुत जरूरी है क्योंकि तड़के में आपका आनंद आना बहुत जरूरी। तो चलिए धूम अगेन आप सुनते हैं विशाल डडलानी और डोमिनिक क्यू सर्जियो की आवाज में फिल्म धूम 2 से ये गीत। इसी के साथ इसके बाद हम उमंग कार्यक्रम सुनेंगे दिल्ली से।

एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। रेनबो पर।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुँचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
2: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS

0: के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।

0: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादी में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए।
3: जी सर।
1: जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
4: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम

काकोरी रेलकांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले

प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: FM Rainbow-তে তিনে কে তিন, তিনে কে তিন, গানের হ্যাট্রিক, গানের হ্যাট্রিক।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: FM Rainbow Tea।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आरजे रिंकू। आप सुन रहे हैं हमारे 107 FM रेनबो पर छायालोक। जी हाँ दोस्तों, आज है सोमवार और आज हम आपके लिए लाए हैं उन सुरों की महफिल को जिनको आप हमेशा याद करते हैं और गुनगुनाने के लिए बेकरार रहते हैं। तो दोस्तों, समय की जो घड़ियाँ हैं टिक टिक टिक टिक करके बढ़ती ही जा रही है और उन घड़ियों में आपकी बेकरारी भी नजर आ रही है। दोस्तों, इन दोनों को अगर मिला दे तो गीतों की तैयारी हमारी भी हमारी आई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम आज का ये कार्यक्रम सुरों की महफिल।
0: सुरों की महफिल

जी हाँ दोस्तों, 1996 की फिल्म राजकुमार एक हिंदी फैंटेसी एक्शन फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। दोस्तों, इस फिल्म के संगीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था और इसके गाने को अलका याग्निक ने अपनी जादुई आवाज दी थी। इस फिल्म संगीत और गायिका अलका याग्निक से इस फिल्म में जुड़ाव जो इस तरह से गठबंधन बनाया गया, उस संगीत को बहुत ही ढांचे के साथ तैयार किया गया और हम तो 107 एफएम रेनबो में ऐसे ही संगीतों के साथ आपका इंतजार करवाते हैं और सुनते हैं अगला गीत अमित कुमार सपना मुखर्जी की आवाज में फिल्म त्रिदेव से।

जी हाँ दोस्तों, अमित कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत भारतीय सिनेमा का एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार गाना था। ये गाना साल 1989 में आए ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म त्रिदेव का है। और इस कल्ट क्लासिक गाने के बारे में अगर हम कुछ बातें कहें तो ये गाना अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और अभिनेत्री सोनम यानी कि अभी जो है बख्तवार खान पर फिल्माया गया था। इसे मशहूर गायक किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार और गायिका सपना मुखर्जी ने मिलकर गाया। इस गाने को दमदार और कैची संगीत कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी यानी कि विजू शाह के संयोग ने तैयार किया था और इस गाने के बेहद आसान और मजेदार बोल दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे। कमाल की बात है कि आनंद बख्शी जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे थे, उन्होंने 90s के ऐसे सुपरहिट्स गाने को ये खूब रंग दिया था। वैसे दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह का डांस गंभीर अभिनय के लिए जाने वाले नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में कमर्शियल गाने में हैट पहनकर जो उन्होंने अनोखा डांस किया था, इसे दर्शकों ने बहुत खूब पसंद किया। आइए दोस्तों, 107 एफएम रेनबो पर ऐसे ही हिट हिट गानों और सुरीली महफिल के साथ हम गीतों को सजाकर आपके पास पेश किए जा रहे हैं। सुनते रहिए आज रिंकू के साथ फिल्म अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में फिल्म आशिकी से ये गीत।

1990 में आई ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म आशिकी का ये गाना आप सुन रहे थे, और इस खूबसूरत गाने को कुमार सानू के साथ अनुराधा पौडवाल ने मिलकर गाया था। दोस्तों, महिला कलाकारों की पंक्तियों में इसके बोल, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, ये गीत धमाका मचाने वाली 1990 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये गाना अभिनेता राहुल रॉय, अभिनेत्री अनु अग्रवाल पर फिल्माया गया था, कि जो कि उनकी ये पहली फिल्म थी। वैसे इस फिल्म का जादुई संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी ने दिया था, और इसके गहरे और भावुक बोल, जिसे आप जानते ही हैं, समीर जी ने लिखे थे। वैसे दोस्तों, ये गीत करियर बदल देने वाला गाना था। इस गाने को पूरी फिल्म के संगीत ने कुमार सानू को रातों रात, जी हाँ रातों रात, बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार सिंगर बना दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सालों तक सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। फिल्म आशिकी का म्यूजिक एल्बम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों में से एक माना जाता है। वैसे इस गीत के गहरे बोल थे, इस गाने की जो पंक्तियां थी वो ऐसे ऐसे बोल आज भी प्यार करने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय माना जाता है। वैसे इस खूबसूरत और रोमांटिक गाने की पुरानी यादों को ही ताजा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर रिंकू के साथ, जी हाँ छायालोक, और इसके साथ ये गीत आपके लिए, जो कि है लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। जी हाँ, आप सुनेंगे अभी छायालोक में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, वैसे चिट्ठियों के बाद, डाक खानों के बाद इस फिल्म ने सिखाया कि फिल्म में हमारे जो लव लेटर है वो भेजने का सिर्फ एक फिर से सफेद कबूतर, यानी कि जिसका नाम फिल्म में हैंडसम था, उसका सहारा लेता है। और ये सीन उस गाने में बहुत ही रोमांटिक तरीके से और उन पलों में पिरोया गया है। वैसे दोस्तों, इस फिल्म की खासियत यही थी कि इस गाने में सलमान खान ने अपनी मशहूर ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी, जिस पर कई तरह के पैच लगे हुए थे। ये जैकेट उस दौर में युवाओं के बीच एक बहुत बड़ा फैशन ट्रेंड बन गई थी। वैसे दोस्तों, एक और बात थी इस फिल्म में, वो था भाग्यश्री का अनोखा रिकॉर्ड। भाग्यश्री ने इस गाने में बेहद सादगी भरा अभिनय किया था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद वे रातों रात पूरे देश की क्रश बन गई थी। वैसे इस फिल्म के बेहतरीन संगीत के लिए संगीतकार राम लक्ष्मण को उस साल का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला था। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि ये गाना सुपरहिट सलमान खान और अभिनेत्री भाग्यश्री पर तो फिल्माया गया, लेकिन ये दोनों ही बतौर मुख्य कलाकार फिल्म में पहली बार ही नजर आए थे। इस गाने को, वैसे सलमान खान को पहली बार फिल्म उसमें देखा गया था, रेखा की फिल्म जिसपे थी, लेकिन इसका शानदार संगीत राम लक्ष्मण, जो विजय पाटिल ने तैयार किया था। इस गाने के बेहद सीधे और दिल को छू लेने वाले बोल देव कोहली ने लिखे थे। वैसे दोस्तों, ये साल 1989 का संगीत था, जिसकी धुन आप 107 FM रेनबो पर रिंगो के साथ सुन रहे हैं। लेकिन साल 91, जिसमें हम एक और गीत आपको सुनाएंगे जिसे थोड़ा दर्द भरा है, लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा क्योंकि वो गीत दिल को छूने वाला है, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। जी हाँ, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्माया गया था। ये फिल्म दिल का है। ये गाना आमिर खान और माधुरी दीक्षित के ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल का है और इसे मशहूर गायक, ये आप जानते हैं, इसे सुरेश वाडेकर ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। साथ दे रही थी अनुराधा पौडवाल। वैसे दोस्तों, इस फिल्म का सुपरहिट संगीत आनंद मिलन की जोड़ी ने तैयार किया था और इसके दिल को छू लेने वाले बोल समीर ने लिखे थे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म की एक बात बताऊं, असल में साल 1989 की तेलुगु फिल्म गीतांजलि के गाने ओ प्रिया प्रिया, यानी कि संगीतकार इलैयाराजा का हिंदी रीमेक था ये गाना, जिसे आनंद मिलन ने हिंदी फिल्म दिल के लिए नए अंदाज में ढाला था। वैसे इस फिल्म के गानों की सफलता का बड़ा हाथ था कि फिल्म दिल उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी और माधुरी दीक्षित को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए करियर का पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों, आप 90s की दुनिया में हैं और अभी एक और गीत, जो कि हमारी एक और हीरोइन थी जो श्रीदेवी, जिसका नाम है, उनका एक गीत जिसे आप सुनना चाहेंगे। आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, ये गाना साल 1989 में आई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी ड्रामा फिल्म चालबाज की है और भारतीय सिनेमा का ये एक बेहद जीवंत, मजेदार और कल्ट क्लासिक सिनेमा माना जाता है। वैसे दोस्तों, इस गाने में श्रीदेवी ने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और लाजवाब डांस से पानी में आग लगा दिया था। वैसे दोस्तों, ये गाना फिल्म चालबाज की ऐसे श्रीदेवी ने डबल रोल निभाई जो अंजू और मंजू के किरदार, जो कि चुलबुली और बिंदास फिल्मों के द्वारा अपने कलाकारी से ये फिल्म को बहुत ही रूबरू तरीके से पेश किया गया था। वैसे इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने गाया था और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज ने श्रीदेवी के नटखट अंदाज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पर्दे पर उतारा था। वैसे इस गाने का सुपरहिट संगीत, जो कि आप जानते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया और इसके मजेदार बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। वैसे दोस्तों, ये गाना फिल्म में तब आता है जब बारिश हो रही होती है और श्रीदेवी जी ने इसमें झूमते हुए पूरी मस्ती भरी डांस करके लोगों को एक आइकॉनिक रेनकोट छाता वाला डांस दिया। इस गाने में श्रीदेवी ने एक चमकीला पीला ट्रांसपेरेंट रेनकोट, रंग बिरंगी फ्रॉक और हाथ में एक अनोखा छाता लिया हुआ था। उनका ये लुक 80 के दशक के अंत में एक बड़ा फैशन और पॉप कल्चर स्टेटमेंट बन गया। वैसे दोस्तों, इस गाने की असली जान श्रीदेवी के चेहरे के हाव भाव ही थे। गाने की लाइन, किसी के हाथ ना आएगी लड़की, पूरी तरह से श्रीदेवी ने अपने किरदार के निभाने से बहुत ही, जो किरदार थी उसको जीवंत कर दिया था और लोगों को बहुत पसंद आया। वैसे इस गाने के कई डांस स्टेप और कॉमिक मूव्स श्रीदेवी ने खुद ऑन स्पॉट बिना क्रियोग्राफी के अपनी मर्जी से ही किए थे, जिसने गाने को और भी नेचुरल और मजेदार बना दिया। वैसे दोस्तों, इस गाने की एक रीमेक भी आई थी जो कि बहुत ही लोकप्रियता इतनी ज्यादा नहीं मिली, लेकिन आई थी। साल 2013 में आई जॉन अब्राहम की फिल्म आई मी और मैं में इस गाने का एक मॉडर्न रीमेक भी दिया गया था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर रिंकू के साथ छायालोक, और सुनते रहिए छायालोक।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 एफएम रेनबो पर, पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाज में ये गीत फिल्म दिल है कि माता नहीं से। लेकिन दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी टिक टिक करके हमें बता ही चुकी है कि 7:55:17 होने को है। तो दोस्तों चलिए एक लास्ट गीत मेरी ओर से आरजे रिंकू की ओर से 107 FM रेनबो पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन इसके साथ वादा करती हूँ कि आरजे देवी का आपके साथ 8 बजे के बाद प्रस्तुत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत मेरी ओर से आपके लिए, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:09:15। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। और छायालोक के अंतर्गत आपसे होंगी आज ढेर सारी बातें, लेकिन फिलहाल ये बातों का जो सिलसिला है इसे आगे बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन कुछ बेहतरीन तरानों के भी साथ। तो दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म एतवार से ये तराना, जिसमें आवाज ही कुमार सानू के साथ सुजाता भट्टाचार्य की। तो अब अगला जो तराना आप सुनेंगे, आप इस तराने को सुनेंगे श्रेया घोषाल की आवाज में। तो आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में ये तराना फिल्म जिस्म से।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। 1999 में आई थी ये फिल्म और ऑन स्क्रीन इस गीत में नजर आए थे अनिल कपूर और उनके साथ थी ऐश्वर्या राय। लेकिन फिल्म में एक और खास अहम किरदार था, जी हाँ मैं बता रही हूँ आपको, उनका नाम भी जी अक्षय खन्ना जो हैं, वो मानव कुमार मेहता के किरदार में नजर आए थे। और ये जो फिल्म थी, इस फिल्म ने बहुत ही प्यारी सी एक लव स्टोरी को पोर्ट्रे किया था। और साथ ही आपको बता दें कि प्यार के साथ सादगी में भरी लिपटी ये जो ऐश्वर्या राय के लुक्स थे या फिर यूं कह सकते हैं उनके अभिनय थे, उनको हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी ये आई थी 1999 में, सुभाष घई ने इसे किया था डायरेक्ट। और साथ ही साथ इस फिल्म के जो गीत थे इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म के सभी गीतों को म्यूज़िक में यानी कि धुन में पिरोया था ARRahman ने। सुभाष घई ने लिखी थी इस फिल्म की जो स्टोरी थी, स्क्रीन प्ले थी, उसको लिखा था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गीत जो थे वो बेहतरीन थे, सभी गीत जो थे वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत थे। वेल फ्रेंड्स, पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना और ये तराना आप सुनेंगे हरिहरन के साथ स्वर्णलता की आवाज में। फिल्म का नाम रंगीला।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: गुमसुम गुमसुम गुप चुप, गुमसुम गुप चुप, गुमसुम गुमसुम गुप चुप, गुमसुम गुप चुप।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे ये गीत, और इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:36। 36 मिनट यानी कि अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन इस दौरान आपको सुनाएंगे कुछ बेहतरीन तराने। बारिश का मौसम और ये गीत ना हो बिल्कुल नहीं बनता है। तो 107 FM रेनबो पर आप सुनेंगे हरिहरन के साथ साधना सरगम की आवाज में ये गीत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

वो लम्हे फिल्म से आप सुन रहे थे जेम्स की आवाज में ये गीत और 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर छायालोक में आज के कार्यक्रम में खूबसूरत तरानों का सिलसिला है जारी और इस दौरान आपको सुना रही हूँ कुछ बेहतरीन तराने। तो दोस्तों इस बीच आपको जो अगला गीत सुनाऊंगी उसके बारे में बता दूं, आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में एक ऐसा गीत जो की है फिल्म लाल सिंह चड्ढा।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:55 और 27 सेकेंड और आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिधि चौहान के साथ क्लिंटन खेरजो की आवाज में आप सुनेंगे फिल्म एक थी डायन से यारम। सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें।

0: तेरे लिए मर भी जाना, उफ नहीं कर दीवाना।
1: सॉन्ग नंबर 11 चलो मैं वापस आऊंगा रे साउंड ट्रैक टा।

0: सॉन्ग नंबर 6 चलो शर्मा ही ज्यादा है।
1: ना करता है मैनु प्यार, क्यों करता नहीं इजहार, अखियां विच पाके अखां क्यों शर्माई।
0: सॉन्ग नंबर 5 चलो आरो एक बंगाली साउंड ट्रैक आलू माखिया है।
1: तो

0: ये घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, अरे आय आय आय आय आय आय। चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, मरत जात।
2: তোমার রিকোয়েস্টের গানের শো শুনতে কি চাও, শুনতে কি চাও, only on 107 FM Rainbow, শুনতে কি চাও, শুনতে কি চাও।
3: ঢাকুরিয়া থেকে মেসেজ করেছে সৌভিক, ও শুনতে চেয়েছে রসগোল্লা সাউন্ডট্র্যাক থেকে অর্ণব দত্তের গলায় এই গানটা।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात गली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात गली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो, चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा, तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात गली एक ख्वाब में आई

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,